0: ढुक्क हूँ प्रभु माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनाऊ।
1: प्रभु माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड।
2: रंग बहार रंग बहार
3: वर्ष संगे उपहारे उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियार
2: वर्ष पेंट से घर रंगाउनु होस् त लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियार 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
3: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि।
2: घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ।